समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

श्रोताओं सुनते हैं भरत व्यास की गीत रचना, संगीत है चित्रगुप्त और स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

श्रोताओं सुनते हैं भरत व्यास की गीत रचना, संगीत है चित्रगुप्त और स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।